0: systems are offline.
1: Number one for today's hits and all-time favorites. 102.7. Let's go. This is your radio, your station.
2: This is East FM.
3: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूना विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अते बार बार अपराध करन वालियां नू भाईचारे तो दूर रखन लई सिस्टम विच सुधार ता जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/sarakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वलो एक सनेहा।
4: This is your favorite radio station, EFM 102.7.
5: Super, super, super, and go.
4: New era, new beginning. This is RK. You're listening to East Option 102.7.
5: Super, super, super, and go.